एक हजार रुपए हाजर करते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, कारोबारा विच वादे बख्शने, देह अरोगता चढ़दी कला बख्शनी। हरमीत कौर तेजिंदर सिंह जी ग्रंथी, देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। काका सुखराज सिंह जी तेजिंदर सिंह जी ग्रंथी, काके नूं दीर्घ आयु दी दात गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शनी। काकी जसमीत कौर तेजिंदर सिंह जी ग्रंथी, बच्ची नूं विद्या दान दी दात बख्शनी, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला रखनी। कुलविंदर कौर नौकरी दी दात लई लंगरां विच 2000 रुपये हाजर करदे पातशाह कृपा करना, नौकरी दी दात बख्श के कृतार्थ करना चढ़दी कला रखनी। हरमनप्रीत सिंह लंगरां विच 1100 रुपए हाजर करदे देह अरोगता विद्या दान चढ़दी कला बख्शनी। सुखमनप्रीत सिंह बेअंत माया हाजर करदे कारोबारा विच वादे बख्शने चढ़दी कला रखनी। इंद्रजीत कौर समूह परिवार देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरदार चरण सिंह जी किशन सिंह

जी आंद्र जी सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस, तेरा घर भला, तेरे घर आनंद बधाई, तन कर मान मत्ता, तेजा अपना आप जा रे, सर्व कला भरप

चतुर चतुर्वर्ती चतुर चतुर्भुदानुदान गुरु गोविंद सिंह काल गुरु गुरु गोविंद सिंह जी गुरु ग्रंथ रही श्री कृपा गुरुवार।

प्रसाद तोमर छंद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन हर चरण चरण विहीन कलंक रूप पाद अचित उदार रूप दुरंत सब जबल मधुरंत जस तिलक रूप निधान जस चाल चाल निधान चाल चाल निधान कलंक रूप अपार सब कलंक स्वरूप दार कल काल कर्म विहीन सकल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रतीन अनखंड अतुल प्रताप समथा जय उठा पल पल भेद भेद अचेद अनचार प्राप्त वेद चार गलत वेद जय नित्य निगम का हंत मुख चार भगतन दयानंद अन विचार बल प्रताप अनखंड अमित प्रताप जय की जगत पसार रचयो विचार विचार अनजय रूप अखंड अनंतता रूप प्रचंड अलग प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सोचो ते ब्रह्मांड सबकीने जगत पसार अव्यक्त रूप उदार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार जय राम बिरंद विचार जय राम सर विचार विनिरा पूर्ण प्रभूल पूर्ण कपूल कई सिंध बिंद न केंद्र कई बिंद चंद न केंद्र कई देवार कुमार कई बिंदिर सनत तार कई सनत सनत तार कई इंद्र बार बुहार कहो निगली कलम करंत कहो मौन लिख धारण दुरंत

सदैया ताहि हिजकी बडैया देद बंदरा सदी उपाय न गई फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बन चारि छित छाना सब दूताधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल वृक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांधरी के जैया कहे आदिश फिरैया दत भूत के पछानी है। जल के तरय को गंगे ऋषि कहत जग आके भजया सूज गोर सम मानिए। सूरज सिवैया दाहे कौल की बड़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए। नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन जारी एक ही के सना।

कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी, कहूँ दंडधारी होइ के लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है ना जन, सुज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओगाधा, अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो, कांसी बीच चीर चीर चोर टाकू।

ताप के सहित जो पाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल अका

जैसे एक दूर ते अनेक दूर मूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग गुड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पछ को करेंगे भज, के तक प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत, किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वासी किते मदी नामका निवासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त, किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त किते जल में रहत, किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानव बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार बूझ हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मटली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित।

मच्छर के सिद्ध साधे कहूं, सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं, अंग के रंग के संग देखे कहूं, जंग के रंग पेखे कहूं, धर्म के कर्म।

हंगाहू औखधि रोग के शोक शोक हंगाहू देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जठ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम के भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जठ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के ऋष्ट बन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं

कहूँ अरबी तुर की पारसी हो, कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी, कहूँ राज विद्या कहूँ राज

विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मले जवाख्या कहूँ वेद रीतन कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बाणी कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या हो तंग प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धीरा।

अंशिज गाद करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम।

यगन होत्र कई पौन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पापत्र भच नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गर्त भांत बंधन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उजरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशर उदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायत न अंत कई गर्त कोट विद्या विचार नहीं तदब देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका। जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न सोख सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्रसितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो। श्रेय सुरेन्द्र श्रेय सुरेन्द्र रूपेन्द्र नकेन्द्र नकंग श्रेय जज गंधर्व फणेन्द्र भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद्भुजंग किए देव देव सरा तंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न।

भूत भूत छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज मृदंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंध दो मुख ताव तप कई गल पन लो तब ताप करय नहीं नैक कृपा निध पान।

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न ने है न गे है न देह को बनाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाव है। न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है अख्याल खंड।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेद है बलि रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है।

है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड तपस्तपि विषे किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपा।

हस्त कीट बिकै बस सब ठौर में निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिखै रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र। आद देवो दार मूर्त अगाद नाथ अनंत, आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेब, सनक औसन के सनंदन पाव ही न हसेब। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार, नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओ मुख चार। सर्व सबद पतार के तर जाप ही जय जाप, आद देवा काद तेजा नाद मुरत अताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहे ओ विराज धिराज राज प्रवीन। जाच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप, रात दिवस न मध

दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद, मित्र पालक शत्रु खालक दीन दयाल मुकांद। अखौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट।

सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्माधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूमका जले तले मय जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध जा।

नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबै कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुघुड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक दोहरा। को निंदा जस है

डावरूड वंके बबर्ब वंके भुजा फुरंके तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अतिथित झमके फुंक फनंग जय जय हुसी मैखा सुर मर्दन रंभक बर्दन दैद जनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दाम नीत मंकन तुजा फरंकन फणि फंकारण जोध जिते सरधार बिपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मा खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी प्रकाश प्रहासन सुचम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़।

छोर हारण धूम धूम कारण द्रव मथे दाड़ विप्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्येजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु कमंकण सत्र जमंकण फणियर भंकारण धर्म धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन आद कुमारा गाध वृते सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे गावरू कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल दले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटी निवारण धम धारण तेज प्रकर्कण तुंद तपे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकर्कण आद नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम धारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशे रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोज विसोजन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे

लाजे गिल विग भाजे सुखूप राजे मध उरं दुर्जन दल दज्जे मंतन रिछे सब न भज्जे रूह रणं जय जय होशी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरं चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर विते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग

सुर नर प्रतिपालन पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन विश्व विदुन संश्रेष्ट करे। दामनी प्रकाशे अंतर नासे ज्योत प्रकाशे अदुल बले दानवी प्रकाश सर्वर वरखण दुष्ट।

दुख दोख प्रभक्षण सेव कर क्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्थ लगा है दुख हरे गंजन कुमान्य अतुल प्रमाण्य संत जमान्य आद अंते जय जय हो सी मखासुर मर्दन साध प्रत

सर्वंग विचार जिम कियो आप करते बसार जद बभूदन भय आनंद तहु कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम कादन कृपाल अद्वय अभूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोक रहत जह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई बुलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै ना सब रोक सोक ते रह द्रु

जे सत्र मित्र दुए गसार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास तात कहे कौन वे कहे नाम तास है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीब बंतन दुरंत जह नेद नेद निज दिन उचरंत पायो न जाय जह पैर पार दी नान दोख दहता उदार कई गोट इंद्र जह पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रतपाल कर संत उबार गनी मन गारे पक्ष पशु नग नाग नरादिव सर्व समय सबको व्रतपार पोखत है जल मैं धन मैं बल मैं करके नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमावत ग्वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगमेव न भेव लख्यो ब्रह्म स्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किंसरी पदमा।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह भी न स्नेह सभोतन देह विरक्त अगेह अच्छा है। जान को देद जान को देद जमीन को देद जमान को दह है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्रीपद महापतल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बात बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेटन बावे। और की बात कहा कह तू सौ सौ भेट ही के बट बीच बचावे। जा छ भुजंग सुदानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल जा छ भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेब न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद से दसनाद सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को मितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद बेगद वेग जप्यो तिन्हि कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिना अंत को अंत के।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जमजाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराधे तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने।

देश के मंगेले वीर भंग से बुंदेले बाप पुंज कोमलत हैं। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शेष न्यावे तिब्बते थे आए दोख देह के दलत है। जिन्हें दोहे दयो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल फूल सिं फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध।

बखानी है अद्वै बिनासी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानी है जंत्र हूँ न जात जागे बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के

काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। जो गहूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोह होने को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है।

जान को बचैया है, मान को देवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है न नर है।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरी अधर्म चाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल इंद्र के कुल के हंस निसी सिहारो महीर सिंह सना बाद गंगा कैसे धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदगढ़ की रसते हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा संब गंग धार बकांसी बुलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी उसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बकरी कंधारी गोर कखरी गर्द जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्पठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रतापी यंत्र मंत्र दया तापी।

निवाजा अखल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहलेहो उबारे कवियो बाच बेंती चौपई।

दरबार नित्य दरबार सुखम संकारा लक्ष्मी कड़ी तुम्हारे दरबार सर देवते कर नमस्कारा दोरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगन जो बिराजरी श्री अंग्रपा।

0: जुग जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पुत्र हाजर हजूरी विच बैठ करके धन सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पावन चरणों में हाजरी भर रही गुरु की साजी निवाजी सात संग जी आओ आप जी बहुत वड्डे कर्मा वाले हो भाई जो महाराज ने रहम की निगाह की है कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना दे मां वाका अनुसार कर कीर्तन होए उधारो मारे कहते भाई कीर्तन करांगे तो उधार होना है। सच्चे सतगुरु जी ने महान समय बख्शे है अपने पावन पवित्र चरणों में बह के सानू हर जस करन दा सुभाग समा बख्शिश किया है ते जतन करिए इस समय नू अजाई ना गवाइए गल्लां तो संकोच करियो जिन्ना क समा महाराज बख्शते है जतन करियो बड़े प्यार दे नाल गुरु महिमा गाइए गुरु महिमा सरवण करिए जिन्हें तुदनो धन कहे तिन जम नेड़ ना आया सचे पातशाह नू जे एक बारी प्रेम दे नाल आपां धन कह दईए ना प्यार च कह दईए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज मारे कहिंदे जन्म मरण दे गेड़ जिहड़े ने उह खत्म हो जांदे आ कोई गावै को सुणै हर नामा चित लाए गाउण दा भी फल है सुणन दा भी फल है शर्त दोवां वास्ते इक्को ही है मारे कहिंदे गाउण वाला चित ला के गावे ते सुणन वाला चित ला के सुणे जे चित ला के गावांगे चित ला के सुणांगे ते मारे कहिंदे कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए मारे कहिंदे फिर शंके वाली कोई गल नहीं जेड़ा चित ला के सुन लेगा जेड़ा चित ला के गा लेगा अखीर विच ओनू परम पदवी प्राप्त होनी है। इस करके भय रख के महाराज की हजूरी च बैठीए डर रख के बैठीए भी आपां बैठे कित्थे आ ऐ सतगुरु जी तेरा शुक्र है तू सानू चरणा विच बाया आ हुण एक कृपा होर करियो ये मन तेरे चरणा दे विच जुड़ जावे आयो गुरफते प्रवाण करियो गज वज के गुरफते बुलायो दोवें हाथ जोड़ के साहब पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणा च शीश झुकाओ गज वज के प्यार च आखो जी वाहे गुरु जी का
1: खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: साई घड़ी सुलखणी सौह नाल विहावे महाराज कहिंदे घड़ी उह सुलखणी है जिहड़े गुरु के चरणा दे विच बीत जावे बाकी ते जिहड़ा समा है ना अपना वह अजाई बीत रहा वा समा उही चंगा जिहड़ा गुरु चरणा दे विच उहदे गुण गाउंदिआं बीत जावे। प्यार च पढ़िओ सारे जणे नाल बोलिओ कोई रसना वांझी ना रहे भाई

सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा करम सच्चा निशान सच्चे जो आख लख करोड़ सच्चे सत्तान सच्चे सब जोर सच्चे तेरी सिफत सच्चे साला सच्चे तेरी कुदरत सच्चे बादशाह नान सच ते आयन सच जो मर्ज मैं सो कच नि

तीर्थ नावह आर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जित अलख नाम करतार सुकम।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगे मोक द्वार जति सदावे जुगत ना जाने